गुरु का खास रूप साध संगत जी दीन दुनिया दे रहबर चवर छतर तख्त दे मालक धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने सुभाग समा बख्शिया है तरस करके अपनी पावन गोद अंदर सज के पावन गुरबाणी नूं पढ़न दा। आओ साध संगत जी सतगुरु सचे पातशाह जी दे चरणा नाल जुड़िए। हुण तक आपां 608 अंक तक सतगुरु जी दी पावन बाणी पढ़ी सुनी विचारी है। सो साध संगत

साध संगत बुद्ध पाई, साकत का बकना इव जानो, जैसे पवन चुलाई, कोट पराध अशादियो इहो मन कहना।

अनक भात करमणिये साजे काचै ताग परोही टूट जाय गो सूत बापुरे फिर पाछै पछतोही जिन तुम सिरजे सिरज सवारे तिस त्यावह दिन रह नेही जन नानक प्रभ कृपा धारी मैं सतगुर ओट गहेही सोरठ महला पंजवा गुर पूरा भेट्यो वडभागी मनह भया परगासा कोई न पहुचन हारा दूजा अपने साहिब।

पद आउंदा साधु संगत जी ओहदे च रहाओ वाले पद च तकरीबन दो पंक्तियां हुंदियां ज्यादातर। हुण आप जी ने दर्शन कीते है उत्ते अंक आया है जै हर दर्शन देह दिखाई तो अगे एक अंक आया। एक तो बाद विच सुन मीता धूरी कौ बल जाई एहो मन तेरा भाई फिर रहाओ। फिर अगे जाके दूसरा पदा आउणा पर जिहड़ा रहाओ वालियां दो पंक्तियां इहनू पदियां च गिणदियां नहीं जांदा भाव इह पदे तो अलग रहाओ वाला बंद एक अलग हुंदा। कईआं शब्दां च दो बार रहाओ भी आउंदा। सो

अला हम भलो ना जान है तुम सदा सदा दयाला तुम सुखदाई पुरख विधाते तुम राखो अपने बाला तुम निधान अटल सुल्तान जी जंत सब जाचे कहो नानक हम एह हवाला राख संतन कै पाछे सोरठ महला पंजवा घर दूजा मात गर्भ में आपन सिमरन दे तह तुम राखन हारे

माधवे पार ब्रह्म निरंकारा नाम वर्तन नामो वालेवा नाम नानक प्राण अधारा सोरठ महल्ला पंजवा मृतक कौ पायो तन सासा बिछुरत आन मिलाया।

0: अवर बोल के दान ही करना अवरदा।
1: धावत धावत नह त्रिपतास्या राम नाम नहीं चीना साध विकार बिखै रस मातो असंख खते कर फेरे
0: मातो कसके खते पाठ पोला।

अघाई जात कत पूर रहो परमेसर कत आवे कत जाई जाप तप संजम ज्ञान तत् बेता जिस मन वसै गोपाला नाम रतन जिन गुरमुख पाया ताकि पूरन काला कल कलेस मिटे दुख सगले काटी जम की फासा कहो ना।

देख रहो प्रभ स्वामी जो किछ करह सोई सोई जाने रह न कछुए छानी रहाओ जिहवा स्वाद लोभ माद मातो उपजे अनक बिकारा बहुत जोन परमत दुख पाया हौ मैं बंधन के पारा दे किवाड़ अनक पड़ दे मह

0: बाणी
1: गुरपुरे की बाणी जप अणद करहो नित प्राणी।
0: हांजी बाणी पद ते विश्राम ला के जप ते ठमक लाउणी। गुरपुरे की बाणी जाप आनंद करहो नित प्राणी।
1: हर साचा सिमरहो भाई साज संग सदा सुख पाईए हर बिसर न

मेरा जिन जिन साध संग पाया सो प्रभ आप तराया कर कृपा नाम रस दिया कुशल खेम सब थिया होए प्रभु सहाई सब उठ लागी पाई सास सास प्रभ त्या

हर दर्शन प्राण आधारा एहो पूरन बिमल बिचारा कर किरपा अंतर जामी दास नानक सरण सुवामी सोरठ महला पंजवा गुरपूरै चरनी लाया हर संग सहाई पाया।

0: तिलका पाठ इकट्ठा नहीं साध संगत जी किते पढ़िया जावे बिघन ना लागे तेल का कोई एक ते दो कक्के कठे हन ओदा भी ध्यान रखना तिलका पाठ इकट्ठा भी ना पढ़िया जावे बिघन ना लागे तेल का कोई कार्ज सगल सवारे रहाओ
1: मिल साधु दुर्मत खोए पतित पुनीत सब होए रामदास सरोवर नाते
0: पतित पाठ ते विश्राम जरूर याद रखना पतित पुनीत कठा नहीं पढ़ सकते नहीं पढ़िया जाना पतित ते पुनीत बिलकुल एक दूजे दे विरोधी शब्द हन पतित दा अर्थ है जेड़ा साध संगत जी पतित हो गया जेड़ा धर्म तो अधर्मी हो गया पुनीत दा अर्थ है पवित्र जेड़ा तन मन धन करके पवित्र हो गया सो गरीब नवाज कहिंदे पतित पुनीत सब होए जदों जेड़े पतित हन जेड़े बहुत ज्यादे अधर्मी लोग हन भाव जिन्हां ने परमेश्वर तो अपना मुख मोड़ लिया है ते दुखां दे विच फसे हुए हन अते गुरु तो मुख मोड़ के ते फिर एक दिन ओ गुरु की शरण आ गए जदों एडे पतित बंदे भी गुरु की शरण आए पुनीत सब होए रामदास सरोवर नहाते सब लाथे पाप कमाते वाहिगुरु गुरु रामदास दे सरोवर की इन्नी वड्डी बरकत है। हांजी
1: गुण गोबिंद नित गाई साध संग मिल त्याई है
0: रामदास तो ही पढ़ दो। हांजी
1: रामदास सरोवर नहाते सब लाथे पाप कमाते गुण गोबिंद नित गाई साध संग मिल त्याई है मन

हुए अपने आप तो प्रकट हो, आप ही ने आप साजे हो, आप ही ने रचे हो ना। सैभं शंभु स्वयंभू पंजाबी रूप सैभं, अपने आप तो आप ही होया है। फिर सारा ज्ञान उसे तो आ रहा है, वो जड़ा एक है वो गुरु है। ज्ञान गुरु है, ज्ञान सारा परमात्मा तो आ रहा है। ज्ञान ही थे गुरु है, ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम वे बहुत लगाओ। सब कुछ जिथे परमात्मा तो आया है, ज्ञान भी उसे तो आया है। कोई गैर गंभीर कविता किसी कवि की नहीं आती, परमात्मा की आती है। कवि की पकड़ दी आ गई, उदय पांडे समा गई। कोई ज्ञान मनुख का नहीं आता, सब परमात्मा का। जब कोई कह देता है ज्ञान मेरा है, उसे ज्ञान की सीमा बन जाती है। जब कोई कहता है ज्ञान परमात्मा तो आया, वो ही असीम हो जाता है। गुरु है, प्रसाद दयालु है, बख्शिंद है, रहीम है, रहमान है, बख्शिंद है, करुणाकर है, दयालु है। इथे तक मूल मंत्र मुख्तसर, ते हुण आप शब्द सरवण करो। हां जी,

इस पंक्ति विच अरजोई है, बेनती है, सारा शब्द बेनती है, अरदास है। कीती हुई साधना, कीता होया जप तप, वही सफल है जो मनुख नू अरदास तक ले जाए, बेनती तक ले जाए। कुछ धर्म ते ऐसे ने, जैसे ईसाई, भी चर्च क्यों जा रहे हो? प्रेयर करने जा रहे हैं, अरदास करने जा रहे हैं, सिर्फ अरदास करने जा रहे हैं। साढ़े च ऐसा नहीं, कीर्तन सुनन जा रहे हैं, कथा सुनन जा रहे हैं, गुरु दे दर्शन करने नहीं जा रहे हैं, सत्संगियां दे दर्शन करने जा रहे हैं, सेवा करने नहीं जा रहे हैं, पुण्य करने नहीं जा रहे हैं। ये सब कुछ कीता होया पुन, सुने होया कीर्तन, सुनी हुई कथा, इसका फल की है अंदरों अरदास दा निकलना। वो अरदास फिर व्यर्थ नहीं जाती, बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास। एक कदों निकल दिए, जप कर करके निकल दिए, कीर्तन सुन सुन के निकल दिए, कथा सुन सुन के निकल दिए, पाठ कर करके निकल दिए, उंज नहीं निकलेगे। उंज बथेरी अरदासा होंदियां ते मनुख कर कुछ रस्मी अरदास, दीवान दी अरदास, दिल दी गहराई चो अरदास निकल दिए, जप कर करके, तप कर करके, साधना कर करके, कीर्तन सुन सुन के, कथा सुन सुन के, बाणी पढ़ पढ़ के, पाठ कर करके, उंज अरदास नहीं निकलती दिल दी गहराई च। और जदों ये अरदास निकल दिए फिर व्यर्थ भी नहीं जाती, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। दिल दी गहराई चो जड़ी अरदास निकली है खुदा तक पहुंचेगी। इसे नु गुरबाणी कहती है, बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास। सारे शब्द विच एक अरदास है, यक अर्ज असी अरदास कहने हैं, परशियन विच कहने ने अरजोई करने, अर्ज करने, अर्ज करने, अरजोई है। संस्कृत विच, हिंदी च कहने ने प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है। फारसी च कहने ने अर्ज करनी है, अरजोई करनी है। गुरु नानक ने एक शब्द नु जन्म देता है, अरदास करनी है। ते अरदास दे जो मैं अर्थ समझे ने ते पढ़े ने, अर्जे दास्त हथ जोड़ के अरजोई करने, दस्त बस्ता हथा नू जोड़ के अरजोई करने, बेनती करने, प्रार्थना करने। सतगुर कहंदे ने, यक अर्ज इक मेरी अरजोई, इक मेरी प्रार्थना, एक मेरी अरदास। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार, गोश कन्ना नु कहंदे ने, ऐ करतार जे तू कन ला के सुने। मनुख जिथे आंदा है उथे ही उसदे कन आंदे ने। घर विच बैठीए मां ते सानू कुछ सुनाना चाहे, नहीं सुन सकदे क्योंकि असी जिथे बैठे हैं कन उथे ही ने। जिथो सानू सुनाया जा रहा उथे साडे कन कोई नहीं। मनुख जिथे आंदा है उसदियां इंद्रियां उथे ही आंदियां, उसदी जबान उथे ही आंदी है, उसदियां अखां उथे ही आंदियां। जिथे है उथे ते वेख सकदा है, जिथे नहीं है नहीं वेख सकदा, जिथे है सुन सकदा है, जिथे नहीं है नहीं सुन सकदा। मनुख जिथे है उहदे ज्ञान ते जद व्यापक है ते उहदा सुनना भी व्यापक है। किसे थां भी अरजोई कीती जा सकदी, किसे थां। परमात्मा व्यापक है, उदा वेखना भी व्यापक है। पेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जानिया दूरी रे। हे प्रभु तू कन कर भाव सुन, हे करतार हे सृष्टि दे रचनहारे। एक अरजोई एक बेनती है। फिर अगलियां पंक्तियां च जिस दे अगों बेनती कर रहे ने उसकी महिमा बयान कर देना। हां जी,

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदियां ने सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वाल जाती पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदियां ने के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तों दुख नहीं निकलदा, किसे नूं मुकदमा पै गया, किसे दे कार औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन। इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोबिंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तां मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रखिया दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: जय
1: प्रसाद ससवारी
0: मंत्र स्पको कभु न बिसारी
1: जय प्रसाद बाग मिलक तना
0: राग प्रय प्रभ अपने मना
1: जिन तेरी मन बंत बनाई
0: उठत बैठ सत्य सहध्याई
1: इसे ध्याय जो एक लख है
0: यहाँ उहा नानक तेरी रखा
1: जय प्रसाद करे पुन बहुदान
0: मन आठ पहर कर तिसका ध्यान
1: जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी
0: जिस प्रभो सास सास तारी
1: जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप
0: प्रभ सिमरो सदा अनूप
1: जय प्रसाद तेरी नीति जात
0: प्रभ सिमर सदा दिन रात
1: जय प्रसाद तेरी पत है
0: गुर प्रसाद नानक जस कह
1: जय प्रसाद सुनहे कर्ण नाद
0: जय प्रसाद पेख है विस्माद
1: जय प्रसाद बोल है अमृत रसना
0: जय प्रसाद सुख सहजे वसना
1: जय प्रसाद हस्त कर चल है
0: जय प्रसाद संपूर्ण फल है
1: जय प्रसाद परम गत पावहे
0: जय प्रसाद सुख सहज समावे
1: ऐसा प्रभ त्याग बरकत लग हो
0: गुर प्रसाद नानक मन जग
1: जय प्रसाद तू प्रकट संसार
0: इस प्रभ को मूल न मनो विसार
1: जय प्रसाद तेरा प्रताप
0: जय मन मूड तू ताको जाप
1: जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे
0: जान मन सदा हरिहरे
1: जय प्रसाद तू पावे साच
0: जे मन मेरे तू तास्यो राज
1: जे प्रसाद शक्ति गत होए
0: नानक जाप जपे जप सोए
1: आप जपाई जपे सोनाऊ
0: आप गवाए सो हर गुण गाओ
1: प्रभ कृपा ते होए प्रकाश
0: प्रभु दया ते कमल विकास
1: प्रभ सो प्रसन्न बसे मन सोए
0: प्रभ दया ते मत उत्तम होए
1: सर्वन धन प्रभ तेरी माया
0: आपो कछु न किन्हु लया
1: जत जत लाभ हो तित लगहे हर नाथ
0: नानक इनके कछु न हाथ श्लोक
1: अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह समुखता होए
0: सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा अष्टपदी
1: साध का संग मुख उजल होत
0: साध संग बल सगली खोत
1: साध का संग मिटे अभिमान
0: साध का संग प्रकट है सुज्ञान
1: साध का संग बुझे प्रभ नीरा
0: साध संग सब होत नबेरा
1: साध का संग पाए नाम रतन
0: साध का संग एको ऊपर जतन
1: साध की महिमा वर्णे कौन पुरानी
0: नानक साध की शोभा प्रभ महे सम्मानी
1: साध का संग अगोचर मिले
0: साध का संग सदा प्रफुल्ल
1: साध का संग आवे बस पंचा
0: साध संग अमृत रस पुंचा
1: साध संग होए सब की रेन
0: साध का संग मनोहर बैन
1: साध का संग न कथूं पावे
0: साध संग अस्तित्व मन पावे
1: साध के संग माया ते भिन्न
0: साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न
1: साध संग दुश्मन सब मीत
0: साधु कै संग महापुनीत
1: साध संग किस्यो नी बैर
0: साध के संग न बीगा पैर
1: साध के संग नाही को मंदा
0: साध संग जाने परमानंदा
1: साध के संग नाही हों ताप
0: साध के संग तो जैसा व्याप
1: आपे जाने साध पढ़ाई
0: नानक साध प्रभु बने आई
1: साध के संग न कभू पावे
0: साध के संग सदा सुख पावे
1: साध संग बस अगोचर लह
0: साधु कै संग अजर सह
1: साध के संग बसै थान ऊंचे
0: साधु कै संग महर पहुंचे
1: साध का संग दृढ़ सब धर्म
0: साध का संग केवल पार ब्रह्म
1: साध का संग पाए नाम निधान
0: नानक साधु के कुर्बान
1: साध का संग सब कुल उधार है
0: साध संग साधन मीत कुटम निस्तार है
1: साधु का संग सो धन पावे
0: जिस धन ते सब को बरसावे
1: साध संग धर्म राय करे सेवा
0: साध का संग सो बासुर देवा
1: साधु का संग पाप पलायन
0: साध संग अमृत गुण गायन
1: साध का संग सर्व थान गम
0: नानक साध का संग सकल जन्म
1: साध का संग नहीं कष्ट काल
0: दर्शन भेंट होत निहाल
1: साध का संग कुलूकत हरै
0: साध का संग नरक पर हरै
1: साध का संग इहा उहा सुहेला
0: साध संग विश्वत हर मेला
1: जो इच्छा सोई फल पावे
0: साध के संग न बिरथा जावे
1: पार ब्रह्म साध रित बसे
0: नानक कुदरे साध सुन रसे
1: साध के संग सुनो हर नाउ
0: साध संग हर के गुण गाओ
1: साध के संग न मन ते बिसरे
0: साध संग सर पर निस्तरे
1: साध के संग लगे प्रभ मीठा
0: साधु के संग घर घर जीठा
1: साध संग भय आज्ञाकारी
0: साध संगत भई हमारी
1: साध के संग मिटे सब रोग
0: नानक साध भेटे संजोग
1: साध की महिमा वेद न जाने हैं
0: जिता सुन तेता बखियाने
1: साध की उपमा तेह गुण ते दूर
0: साध की उपमा रही भरपूर
1: साध की शोभा का नाही अंत
0: साध की शोभा सदा बेअंत
1: साध की शोभा ऊंचते ऊंची
0: साध की शोभा मूचते मूची
1: साध की शोभा साध बनाई
0: नानक साध प्रभ भेद न पाई श्लोक
1: मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखे
0: कस बिन कोए
1: नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए
0: अष्टपदी
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप
0: जैसे जल में कमल लेप
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख
0: जैसे सूर सर्व को सुख
1: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान
0: जैसे राज रंक को लागे तुल पवान
1: ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक
0: ज्यो बसदा को खुद को चिंतन ले
1: ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ
0: नानक ज्यो भाव का सह स्वभाव
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल से निर्मला
0: जैसे मैल न लागे जला
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश
0: जैसे तर ऊपर आकाश
1: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान
0: ब्रह्म ज्ञानी के नहीं अभिमान
1: ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा
0: मन अपने है सबते नीचा
1: ब्रह्म ज्ञानी से ਜਨ ਭਏ
2: ਨਾਨਕ ਜਨ ਪ੍ਰਵਿਆਪ ਕਰੇ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਗਲ ਕਿਰੀਨਾ
2: ਆਤਮ ਰਸਮ ਗਿਆਨੀ ਚੀਨਾ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸਭ ਉਪਰ ਮਾਇਆ
2: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਕਛ ਬੁਰਾ ਨ ਭਇਆ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਮਦਰਸ਼ੀ
2: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸੀ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ
2: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਜੁਗਤਾ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ
2: ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਉਪਰਿਆਸ
2: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਗਰੀਬੀ ਸਮਾਹਾ
2: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹਾ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਾ ਹੀ ਧੰਦਾ
2: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਤਾਵਤ ਬੰਦਾ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਹੋਏ ਸੁਫਲਾ
2: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਫਲ ਫਲਾ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਗ ਸਗਲ ਉਧਾਰ
2: ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਪੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਇਕ ਰੰਗ
2: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ
2: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਾਮ ਪਰਿਵਾਰ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਦ ਜਾਗਤ
2: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅੰਗੁਰ ਤਿਆਗਤ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਮਨ ਪਰਮਾਨੰਦ
2: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਸ
2: ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਪਿਤਾ
2: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਸੰਖੇਤਾ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਹੋਏ ਅਚਿੰਤ
2: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤਰ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਕਰੈ ਪ੍ਰਭ ਆਪ
2: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬੜ ਪ੍ਰਤਾਪ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਦਰਸ ਬੜ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ
2: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਖੋਜੇ ਹੈ ਮਹੇਸ਼ਵਰ
2: ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਹੈ
2: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਗਲਵਾਨ ਮਾਹੇ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਭੇਦ
2: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਸਦਾ ਆਦੇਸ਼
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕਥਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਅੱਧਾ ਅੱਖਰ
2: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਵ ਕਾ ਠਾਕੁਰ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਬਖਾਨੈ
2: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੈ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰ
2: ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਕਰਤਾ
2: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ
2: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਨਾਥ ਕਾ ਨਾਥ
2: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਭ ਉਪਰ ਹਾਥ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਗਲ ਆਕਾਰ
2: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣੀ
2: ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਵ ਕਾ ਧਨੀ ਸਲੋਕ
1: ਔਰ ਧਾਰੈ ਜੋ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਸਰਬ ਮੈਂ ਵੇਖੈ ਭਗਵਾਨ ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ
2: ਠਾਕੁਰ ਨਮਸਕਾਰ ਨਾਨਕ ਉਹ ਅਪਰਸ ਸਗਲ ਨਿਸਤਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਮਿਥਿਆ ਨਾ ਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ
2: ਮਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਰੰਜਨ ਦਰਸ
1: ਸਤਿਆ ਰੂਪ ਨਾ ਵੇਖੈ ਨੇਤਰ
2: ਸਾਧਕ ਟਹਿਲ ਸੰਤ ਸੰਘੇਤ
1: ਕਰਨਨ ਸੁਣੈ ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਿੰਦਾ
2: ਸਭ ਤੇ ਜਾਣੈ ਆਪਸ ਕੋ ਮੰਦਾ
1: ਔਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਖਿਆ ਪਰ ਹਰੈ
2: ਮਨ ਕੀ ਵਾਸਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਰੈ
1: ਇੰਦਰੀ ਜਤ ਪੰਚ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਿਤ
2: ਨਾਨਕ ਕੋਟ ਮਦੇ ਕੋ ਐਸਾ ਪਰਸ
1: ਵੈਸਨੋ ਸੋ ਜਿਸ ਉਪਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ
2: ਵਿਸਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੋਏ ਭਿੰਨ
1: ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੈ ਨਿਹ ਕਰਮ
2: ਇਸ ਵੈਸਨੋ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ
1: ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬੰਛੈ
2: ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗ ਰਚੈ
1: ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਗੋਪਾਲ
2: ਸਭ ਉਪਰ ਹੋਵਤ ਕਿਰਪਾਲ
1: ਆਪ ਦ੍ਰਿੜੈ ਅਬਰਾਹ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ
2: ਨਾਨਕ ਹੋ ਵੈਸਨੋ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ
1: ਭਗਵਤੀ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਕਾ ਰੰਗ
2: ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ ਦੁਸ਼ਟ ਕਾ ਸੰਗ
1: ਮਨ ਤੇ ਬਿਨਸੈ ਸਗਲਾ ਭਰਮ
2: ਕਰ ਪੂਜੈ ਸਗਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਪਾਂ ਮਲ ਖੋਵੈ
2: ਇਸ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਮਤ ਉਤਮ ਹੋਵੈ
1: ਭਗਵੰਤ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਰੈ ਨਿਤ ਨੀਤ
2: ਮਨ ਤਨ ਅਰਪੈ ਬਿਸਨ ਪ੍ਰੀਤ
1: ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਵੈ
2: ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਭਗਵਤੀ ਭਗਵੰਤ ਕੋ ਪਾਵੈ
1: ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧ ਹੈ
2: ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮ ਮੈਂ ਸੁਧੈ
1: ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰ ਰਸ ਪੀਵੈ
2: ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਕੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਗ ਜੀਵੈ
1: ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਵੈ
2: ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਫਿਰ ਜੋ ਨਿਆਵੈ
1: ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਬੂਝੈ ਮੂਲ
2: ਸੁਖ ਮੈਂ ਜਾਣੈ ਅਸਥੂਲ
1: ਜੋ ਵਰਨਾ ਕੋ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼
2: ਨਾਨਕ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਕੋ ਸਦਾ ਆਦੇਸ਼
1: ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਸਰਵ ਕੋ ਗਿਆਨ
2: ਜੋ ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਜਪੇ ਕੋ ਨਾਮ
1: ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ
2: ਸਾ ਸੰਗ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ
1: ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਅੰਤਰ ਉਰਤਾਰ ਹੈ
2: ਬਸ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਤ ਪਾਤਰ ਕੋ ਉਤਾਰ ਹੈ
1: ਸਰਵ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ
2: ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਮ
1: ਕਾਹੂ ਜੁਗਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪਾਈਐ ਧਰਮ
2: ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ
1: ਜਿਸ ਕੈ ਮਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਨਿਵਾਸ
2: ਜਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਸਤ ਰਾਮਦਾਸ
1: ਆਤਮ ਰਾਮ ਤਿਸ ਨਦਰੀ ਆਇਆ
2: ਦਾਸ ਸੰਤਨ ਪਾਏ ਤਿਨ ਪਾਇਆ
1: ਸਦਾ ਨਿਕਟ ਨਿਕਟ ਹਰ ਜਾਨ
2: ਸੋ ਦਾਸ ਦਰਗਾ ਪਰਵਾਨ
1: ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ
2: ਜਿਸ ਦਾਸ ਕੋ ਸਭ ਸੋਜੀ ਪਰੈ
1: ਸਗਲ ਸੰਗ ਆਤਮ ਉਦਾਸ
2: ਅਸੀਂ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕ ਰਾਮਦਾਸ
1: ਰੱਬ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ
2: ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਹਾਵੈ
1: ਐਸਾ ਹਕ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ
2: ਸਦਾ ਅਨੰਤ ਹੈ ਨਾਹੀ ਵਿਯੋਗ
1: ਐਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ
2: ਐਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿਖਾਟੀ
1: ਐਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ
2: ਐਸਾ ਰੰਗ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ
1: ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ
2: ਨਾਨਕ ਉਹ ਪੁਰਖ ਕਹੀਏ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਗਲੇ ਠਾਉ
2: ਜਿਤ ਜਿਤ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਤੈਸਾ ਤਿਨ ਨਾਮ
1: ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਜੋਗ
2: ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਪਨ ਹੋਗ
1: ਅਸਰਿਓ ਆਪ ਹੋਏ ਅੰਤ ਤਰੰਗ
2: ਲਖਨ ਨਾ ਜਾਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਰੰਗ
1: ਜੈਸੀ ਮਤ ਦੇ ਤੈਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
2: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਤਾ ਅਵਿਨਾਸ਼
1: ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਯਾਲ
2: ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਪਏ ਨਿਹਾਲ ਸਲੋਕ
1: ਉਸਤ ਕਰੇ ਅਨੇਕ ਜਨ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਾਰ
2: ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਰਚੀ ਬਹੁ ਵਿਦਿਆਨਕ ਪਰਕਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਪੂਜਾਰੀ
2: ਕਈ ਕੋਟ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ
2: ਕਈ ਕੋਟ ਬਨ ਪ੍ਰਮੈ ਉਦਾਸੀ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਬੀਰ ਕੇ ਸਰੋਤੇ
2: ਕਈ ਕੋਟ ਤਪੀਸਰ ਹੋਤੇ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਆਤਮ ਧਿਆਨ ਧਾਰੇ
2: ਕਈ ਕੋਟ ਕਵ ਕਾਵ ਵਿਚਾਰੇ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਨਵਤਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਹੇ
2: ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਵੇ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਅਭਿਮਾਨੀ
2: ਕਈ ਕੋਟ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਕਿਰਪਨ ਕਠੋਰ
2: ਕਈ ਕੋਟ ਭਿਗ ਆਤਮ ਨੇ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦਰਬ ਕੋ ਹਿਰਹੇ
2: कई कोट पर दुख न करें,
1: कई कोट माया श्रम माहे,
2: कई कोट पर देश भरमा है,
1: जित जित लाभ होते तित लगना,
2: नानक करते की जाने करता रचना,
1: कई कोट सिद्ध जति जोगी,
2: कई कोट राजे रस भोगी,
1: कई कोट पंखी सर्प उपाए,
2: कई कोट पात्र बृख निपजाए,
1: कई कोट पवन पानी बै संतर,
2: कई कोट देश भूमंडल,
1: कई कोट शशि सूर नखत्र,
2: कई कोट देव दानव इंद्र शिर छत्र,
1: सगर समग्री अपने सूत धार,
2: नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार,
1: कई कोट राजस तामस सातक,
2: कई कोट वेद प्राण समृति अर शास्त्र,
1: कई कोट किए रतन समुंद,
2: कई कोट नाना प्रकार जंत,
1: कई कोट किए चिर जीवे,
2: कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे,
1: कई कोट जख के निरपिशाच,
2: कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाच,
1: सबे नेरा सब हूं ते दूर,
2: नानक आप लिप्त रे अप्रभूर,
1: कई कोट पाताल के वासी,
2: कई कोट नरक स्वर्ग निवासी,
1: कई कोट जन्म है जीव है मर है,
2: कई कोट बहु जोनी फिर,
1: कई कोट बैठ ही खाहे,
2: कई कोट काले थक पाहे,
1: कई कोट की ये धनवंत,
2: कई कोट मा चिंत,
1: जय जय भाणा तह तह राखे,
2: नानक सब किश प्रभु के हाथे,
1: कई कोट भय वैरागी,
2: राम नाम संग तिन लिव लागी,
1: कई कोट प्रभु को खोजंते,
2: आत्म मह पार ब्रह्म लहंते,
1: कई कोट दर्शन प्रभु प्यास,
2: जिनको मिलियो प्रभु विनास,
1: कई कोट मांगे है सत्संग,
2: पार ब्रह्म तिन लागा रंग,
1: जिनको होए आप सो प्रसन्न,
2: नानक तेजन सदा धन धन,
1: कई कोट खानी अरखंड,
2: कई कोट आकाश ब्रह्मंड,
1: कई कोट होए अवतार,
2: कई जग की नु विस्तार,
1: कई बार पसरियो पासार,
2: सदा सदा एक एक अंकार,
1: कई कोट कीने बहु भांत,
2: प्रभु महे समात,
1: ताका अंत न जाने कोई,
2: आपे आप नानक प्रभु सोए,
1: कई कोट पार ब्रह्म के दास,
2: जिनहो वत्या तन प्रगास,
1: कई कोट तत्व के बेते,
2: सदा नहारे एको नेत्रे,
1: कई कोट नाम रस पीव है,
2: अमर भये सब सद ही जीव है,
1: कई कोट नाम गुण गावे,
2: आत्म रस सुख सहज समावे,
1: अपने जन को साथ साथ संभारी,
2: नानक हे परमेश्वर के प्यारे श्लोक,
1: करण कारण प्रभु एक है दूसर नाही कोई,
2: नानक तिस बलहार ने जल थल मैल सोए, अष्टपदी
1: कर्ण करावन करने जोग,
2: ज्योत सुभावे सोई होग,
1: जिन में थाप उताप नहारा,
2: अंत नहीं किश पारा वारा,
1: हुक्मे धार अधार रहावे,
2: हुक्मे उपजे हुक्म समावे,
1: हुक्मे ऊच नीच व्यवहार,
2: हुक्मे अनेक रंग प्रकार,
1: कर कर दिखे अपनी वडियाई,
2: नानक सब में रहा समाई,
1: रब भावे मानो गत पावे,
2: रब भावे ता पात्र त्रावे,
1: रब भावे बिन सास ते रखे,
2: रब भावे ता हर गुण पाखे,
1: रब भावे ता पत उधार है,
2: आप करे अपन विचार है,
1: दोहा श्रेया का आप स्वामी,
2: खेले से अंतर जामी,
1: जो भावे सो कार करावे,
2: नानक दृष्टि अवर न आवे,
1: बहु मनुख ते क्या होए आवे,
2: ज्योत सुभावे सोई करावे,
1: इसके हाथ होए ता सत पिछले,
2: ज्योत सुभावे सोई करे,
1: मन जानत बिखिया मह रचे,
2: जे जानते अपने आप बचे,
1: धर्मे भूला दह दिस धावे,
2: नमक माही चार कुंठ फिर आवे,
1: कर कृपा जस अपनी भक्त दे,
2: नानक ते जन नाम मिले,
1: छिनवे नीच कीट को राज,
2: पार ब्रह्म गरीब नवाज,
1: जाका दृष्ट कछु न आवे,
2: इस तत्काल दह दिस प्रगटावे,
1: जाको अपनी करे बख्शीस,
2: ताका लेखा न गणे जगदीश,
1: जियो पिंड सब तिसकी रास,
2: कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास,
1: अपनी बनत आप बनाई,
2: नानक जीवै देख बढ़ाई,
1: इसका बल नाही सहात,
2: कल करावन सर्व को नाथ,
1: आज्ञाकारी बपरा जियो,
2: ज्योत सुभावै सोई फन थी,
1: कब हूँ ऊंच नीच मैं बसै,
2: कब हूँ सोग हर करंग हसै,
1: कब हूँ निंद चिंद व्यवहार,
2: कब हूँ ऊब आकाश प्याल,
1: कब हूँ बेता ब्रह्म विचार,
2: नानक आप मिलावन हार,
1: कब हूँ निर्त करै बहु भांत,
2: कब हूँ सोए रहै दिन रात,
1: कब हूँ महाक्रोध विकराल,
2: कब हूँ सर्व की होतरवाल,
1: कब हूँ होए वह बड़ राजा,
2: कबू भिखारी नीच का साजा,
1: कबू आप कीर्त में आवे,
2: कबू भला भला कहावे,
1: ज्यों प्रभु राखे तिव ही रहे,
2: वर प्रसाद नानक सच कहे,
1: कबू होए पंडित करे बख्यान,
2: कबू मोहन तारी लावे ध्यान,
1: कबू तट तीर्थ स्नान,
2: कबू सिद्ध साधक मुख ज्ञान,
1: कबू पीठ हस्त पतंग होए दिया,
2: अनक जोन परमे परमिया,
1: नाना रूप ज्यो स्वांगी दिखावे,
2: जो प्रभु भावे तिवे न जावे,
1: जो भावे सोई होए,
2: नानक दूजा अवर न कोए,
1: कबू साध संगति पावे,
2: उस स्थान ते बौर न आवे,
1: अंतर होए ज्ञान प्रकाश,
2: उस स्थान का नहीं विनाश,
1: मन तन नाम रते एक रंग,
2: सदा बसै पार ब्रह्म के संग,
1: ज्यों जल मह जल आए कटाना,
2: ज्यों ज्योति संग ज्योत समाना,
1: मिट गए गबन पाए विश्राम,
2: नानक प्रभु के सद कुर्बान श्लोक,
1: सुखी बसै मस्कीनिया आप निवार तले,
2: बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले, अष्टपदी
1: जिसके अंतर राज अभिमान,
2: सो नरक पाती होवत स्वान,
1: जो जान है मैं जो बनवंत,
2: सो होवत विष्टा का जंत,
1: आप को कर्मवंत कहावे,
2: जन्म मरे भोजन परमावे,
1: धन भूम का जो करे गुमान,
2: सो मूर्ख अंधा अज्ञान,
1: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे,
2: नानकी है मुक्ति अगै सुख पावे,
1: धनवंता हुए कर गर्भावे,
2: तृण समान का चंग न जावे,
1: बहु लश्कर मनुख ऊपर करे आस,
2: और भीतरता का हुए विनाश,
1: सबके आप जाने बलवंत,
2: होए जाए बसवंत
1: सेना बदे आप अहंकारी
2: धर्म राय तिस करे खुवारी
1: गुर प्रसाद जा का मिटे अभिमान
2: सोजन नानक दरगाह परवान
1: कोट कर्म करे हों तारी
2: शरम पावे सकले बरथारे
1: अनक तपस्या करे अहंकार
2: नरक स्वर्ग फिर अवतार
1: अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे
2: हर दरगाह को कैसे गवे
1: आप को जो भला कहावे
2: सिर भलाई निकट में आवे
1: सर की रेन जा का मन होए
2: कहो नानक ताके निर्मल सोए
1: जब लग जाने मुझते कश होए
2: जब इस को सुख नाही कोए
1: जब यह जाने मैं किस करता
2: जब लग गर्भ जोन में फिरता
1: जब धारे को बैरी मीत
2: जब लग निश्चल नाही चीत
1: जब लग मोह मगन संग माए
2: तब लग धर्म राय देश जाए
1: रब कृपा से बंधन टूटे
2: गुरु को साधना अनक हो छुटे
1: सहस कटे लग को उठ पावे
2: रतन आवे माया पछे पावे
1: अनक भोग विखिया के करे
2: नैत बतावे खप खप मरे
1: बिना संतोख नहीं को राजे
2: सुपन मनोरथ फिर थे सब काजे
1: नाम रंग सर्व सुख होए
2: प्रभागी किसे प्राप्त होए
1: कर्ण करावन आपे आप
2: सदा सदा नानक हर जा
1: कर्ण करावन करने हार
2: इसके हाथ कहा विचार
1: जैसी दृष्ट करे तैसा होए
2: आपे आप आप्रम सोए
1: जो किश पीनो सो अपने रंग
2: सब ते दूर सब हूँ कै संग
1: दूजे देखे करे विवेक
2: आपे एका पै अनेक
1: मरे न बिनसे आवे न जाए
2: नानक सधी रह समाए
1: आप उपदेशे समझे आप
2: आपे रचिया सबके साथ
1: आप तीनों अपन विस्तार
2: सब कुछ उसका हो करने हार
1: पुस्ते भिन्न कहो किश होए
2: अंत नंतर एक सोए
1: अपने चलित आप करने हार
2: गौत करे रंग अपार
1: मन में आप मन अपने माहे
2: नानक कीमत कह न जाए
1: सत सत सत प्रभु स्वामी
2: गुर प्रसाद किने बखियानी
1: सच सच सत सब कीना
2: कोट मदय किने बिरले चीना
1: भला भला भला तेरा रूप
2: अत सुंदर अपार अनूप
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
2: कटकट सुनी सर उन बखियानी
1: पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत
2: नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक
1: संत शरण जो जन पर सो जन उदर नहार
2: संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी
1: संत का दुखन आरजा कटे
2: संत का दुखन जमते नहीं छुटे
1: संत का दुखन सुख सब जाए
2: संत का दुखन नरक में पाए
1: संत का दुखन मत होए मलीन
2: संत का दुखन शोभा देहीन
1: संत के हथे को रखे न कोई
2: संत का दुखन थान भ्रष्ट होए
1: संत कृपाल कृपा जे करे
2: नानक संत संग निंदक भीतर
1: संत के दुखन ते मुख पवे
2: संतन के दुखन काग ज्यो लवे
1: संतन के दुखन सर्प जोन पाए
2: संत का दुखन त्रिगत जोन करमाए
1: संतन का दुखन तृष्णा मह जले
2: संत का दुखन सब को छले
1: संत का दुखन तेज सब जाए
2: संत का दुखन नीच निचाए
1: संत दुखी का थाओ को नाही
2: नानक संत भावे ता ए पी गत पाए
1: संत का निंदक महा अतताई
2: संत का निंदक खन टिकन न पाए
1: संत का निंदक महा हत्यारा
2: संत का निंदक परमेश्वर मारा
1: संत का निंदक राज तेहीन
2: संत का निंदक दुखिया अरदीन
1: संत के निंदक को सर्व रोग
2: संत के निंदक को सदा बिजोग
1: संत के निंदा दुख में दुख
2: नानक संत भावे ता उसका भी होए मोख
1: संत का दुखी सदा अपवित
2: संत का दुखी किसे का नहीं मित
1: संत के दुखी को डान लग
2: संत के दुखी को सब त्याग
1: संत का दुखी महा अहंकारी
2: संत का दुखी सदा बेकारी
1: संत का दुखी जन्म मरे
2: संत की दुख न सुख ते तरे
1: संत के दुखी को ना ही ठाओ
2: नानक संत भावे ता लय मिलाए
1: संत का दुखी अद बीज ते टूटे
2: संत का दुखी कित काज न पहुंचे
1: संत के दुखी को उद्यान परमाइये
2: संत का दुखी उजड़ पाइये
1: संत का दुखी अंतर ते थोथा
2: जो सास बिना मृत की लोथा
1: संत के दुखी की जड़ किस ना ही
2: अपन बीजा पे ही खाहे
1: संत के दुखी को अवर न रखन हार
2: नानक संत भावे ता लय उबार
1: संत का दुखी इउं बिल लाए
2: जो जल बिन हुन मछली तड़फड़ाए
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजै
2: जो पावक ईंधन नहीं त्रापे
1: संत का दुखी छुटे अकेला
2: जो बवाड़ तेरे खेत माहे दुहेला
1: संत का दुखी धर्म ते रहत
2: संत का दुखी सत मिथ्या कहत
1: किरत निंदक का तुर ही पया
2: नानक जो तिस भावे सोई थिया
1: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए
2: संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए
1: संत का दुखी सदा सहकाइये
2: संत का दुखी ना मरे ना जिवाइये
1: संत के दुखी की पूजा न आसा
2: संत का दुखी उठ चले निराशा
1: संत के दुख न दृष्टे कोई
2: जैसा भावे तैसा कोई होए
1: पया किरत न मिटे कोई
2: नानक जाने सच्चा सोए
1: सब कर तिसके हो करने हार
2: सदा सदा तिसको नमस्कार
1: रब की उसत करहो दिन रात
2: तिसे त्यागो सास ग्रास
1: सब कछ वर्तै तिसका किया
2: जैसा करे तैसा को थिया
1: अपना खेला करने हार
2: दूसर कौन कहे विचार
1: जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे
2: वडपा की नानक जन से श्लोक
1: तज हो सियान पुसुर जन हो सिमर हो हर हर राय
2: एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पौ जाए अष्टपदी
1: मनुख की टेट बिरथी सब जान
2: जीवन पौ एक है भगवान
1: जिसके दिया रह अगाए
2: और न तृष्णा लागे आए
1: मारे रखे एको आप
2: मानक कक्ष ना ही हाथ
1: इसका हुक्म भू सुख होए
2: इसका नाम रख कंठ परोए
1: सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए
2: नानक बिघन न लागे कोए
1: उसत मन में कर निरंकार
2: मन मेरे सत व्यवहार
1: निर्मल रसना अमृत पियो
2: सदा सहेला कर ले जियो
1: नैनो बेग ठाकुर का रंग
2: सदा संग बिन सह सब संग
1: चलो मार्ग गोविंद
2: मिटे पाप जपिया हर बिंद
1: हर हर कर्म श्रवण हर कथा
2: आदर ज्ञान नानक उज्जल मथा
1: बड भागी ते जन जग माहे
2: सदा सदा हर के गुण गाहे
1: राम नाम जो करे विचार
2: शीतल मंतक नि संसार
1: मन तन मुख बोले हर मुखी
2: सदा सदा जानो ते सुखी
1: एको एक एक पछानै
2: तुत कियो सोजी जानै
1: नाम संग जिस का मन मानिया
2: नानक तने निरंजन जानिया
1: गुर प्रसाद अपने आप सुजै
2: जिसकी जानो तृष्णा बुझै
1: साध संग हर हर जस कहत
2: सर्व रोग त्यो हर जन रहत
1: धन दिन कीर्तन केवल बखयान
2: रस्त में सोई निर्वाण
1: एक ऊपर जिस जन की आशा
2: जिसकी कटिए जन की फसा
1: पार ब्रह्म की जिस मन भूख
2: नानक किसन लागे दुख
1: जिसको हर ब्रह्म मन चित आवे
2: सो संत सोहेला नहीं बुलावे
1: जिस प्रभु अपना कृपा करे
2: सो सेवक को किसते डरे
1: जैसा सत ऐसा दृष्ट आया
2: अपने कार्य में आप समाया
1: सोधत सोधत सोधत सीजया
2: प्रसाद तत् सब पूजया
1: जब देखो तब सब शमूल
2: नानक सो सूक्ष्म सोई स्थूल
1: नह किशन मैं नह किश मरै
2: अपने चलते आप ही करे
1: आवन जावन दृष्ट अन दृष्ट
2: आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट
1: आपे आप सगल में आप
2: अनक युग त्रच था प्यो था
1: अवनाशी नाही किश खंड
2: धारण धार रहे हो ब्रह्मांड
1: लख पे पुरख प्रताप
2: आप जपाए त नानक जाप
1: जिन प्रभु जाता सो सो बावंत
2: सगल संसार उदरै तन मंत
1: प्रभु के सेवक सगल उदारण
2: प्रभु के सेवक दुख बिसारण
1: आपे मेल लय कृपाल
2: गुर का शब्द जप भय निहाल
1: उनकी सेवा सो ही लागे
2: जिसनो कृपा करे बट भागे
1: नाम जपत पावे विश्राम
2: नानक तन पुरख को उत्तम कर मान
1: जो किश करे सो प्रभु कै रंग
2: सदा सदा बसै हर संग
1: सह सुपाई हो वह सो हो
2: करने हार पछाणे सोए
1: प्रभु का किया जन मीठ लगाना
2: जैसा सत ऐसा दृष्टाना
1: जिसकी उपजे तिस माही समाई
2: सुख निधान उन्हों।

निरंकार है नहीं लय निरकना चाहिए जियो पिंड सब दिसदा देखा जे आख गवाइए जे लोड़ है चंगा अपना कर पुनो नीज सुधाइए जे जरवाना पर हरे जरवेस करिंदी आइए को रहना पर ये पाइए को रहना पर ये पाइए।

पौड़ी बिन सतगुर कने ना पायो, बिन सतगुर कने ना पाया। सतगुर विच आप रखे उन कर प्रगटाक सुनाया। सतगुर मिलिए सदा मुक्त है जिन विच हमो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिंह चितलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

पौड़ी सेव की संतोखी जिन्हें सचो सच त्याया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सुखे तो धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन्न पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देव चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

0: जुबा पूरा तपे का सत गिर जुबा हो का जुगरा थगन का कूड़ा गैर रुतवा हो।
1: पहला शाम कहे सितंबर स्वामी सच में ऐसा सच रहे।

0: नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुरक पुठानी अमलकिया
1: चारे वेद होए सुचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाप भक्त करनी।

0: ब्राह्मण वटे आए कोहे बकरा रिन खाया। सबको आख पाए हुए प्राणा सटिए फिर पाया होर नानक तग न टुटे जे तग होवे जो।
1: महला पहला नाय मनिए पत उपजे शाला ही सूत

नानक कूड रहया पर भो। मथे टिका तेड़ तो टीका खाई, हाथ छुरी जत कसाई, नील वस्त्र पैर होवे प्रभा।

पौरिया पिहकरणा क्यों कलप हित धारिय देख है किता अपना तर्क चिपकी सारिय जो आ

नमस्तल परनामे समस्तल परनास अगंजुल अनामे समस्तल निवासे निरकामं विभूते समस्तल स्वरूपे को कर्मं परनासी सो धर्मं विभूते।

मानम मलांगे श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलांगे वीर अपार बड़े बड़े आर अवचार हिसार की धार पछैया तोर तदे समलेंद मवासन मातक जान के मान मलैया।

नमस्कार तिसिहि को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मोह बद कियो घट घट के अंत

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।
2: वाहे गुरु।

ऐसा हुंदा है। सच्चे सतगुरु प्रश्न दा उत्तर उपदेश बख्शिश करदे ने महले तीसरे अंदर। धन गुरु अमरदास महाराज गुरसिखा नू उपदेश बख्शिश करदे आखदे बिन नावै जग भरम दा। नाम तो बिना ते संसार दे अंदर जेड़े जीवां दा ऐसा भ्रमणा हुंदा है जिमें संगत जी बेलियां विच जंगलां विच पशु भरमदे फिरदे कोई ज्ञान नहीं, जिमें आसमाना विच उड्डन वाले पंछी भरमदे फिरदे ने। जेड़े नाम तो हीने जीव हन ओह भी बस उन्हां दे वांग ही शकन शकाउन दे विच सौन दे विच विकार भोगण दे विच गुलतान रहिंदे ने। बिन नावै सब भरम दे, बिना नाम तो सारे ही भरम दे फिरदे ने। नित जग तोटा सहसार, नित

श्लोक गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान पंजन गुरुदेव बंद पिस

और कृष्ण वाक्य, कहो कबीर जो ब्रह्म विचारे सो ब्राह्मण कहियत है हमारे, जो ब्रह्म दे विचार करता है ब्राह्मण, वेद शब्दंग ब्राह्मण है, विद्या दे विचार करता है सोचता है ब्राह्मण, सिर नु वगे करता है ब्राह्मण, हाथ अगे ने हथां च ताकत होनी चाहिए, सिर विच नहीं है ते ना सही, हाथ मजबूत होने चाहिए। मेरे दो हाथ इतने मजबूत होवन 1000 हथां नू जकड़ के रख देन। पता है भारत विच एक ऐसा पुरुष होया जिहदा नां सी सहनसर बाहु, सहनसर बाहु, सहंस कहिंदे ने 1000 नू, 1000 बावां वाला। मिथिहास दे चां सच्चाई कढ़नी पैगी, 1000 बावां इको ही मनुख दियां होवन तो मेरे ख्याल सारा हाल कमरे चो कल्ला ही बैठ सकेगा। 1000 बावां बहुत वड्डा शरीर चाहिदा है, 1000 बावां। पर मैं करां सच्चाई है, होंदे ने सेंसर बाव, हैं ते उसदे कोल दो हथ और उहदे कोल 1000 हथ जुड़े होंदे, जोड़ के खड़े होंदे, उहदे दो हथ 1000 हथां नूं बन के रख देंदे, उहदे दो हथ 1000 दे सिरां नूं झुका के रख देंदे। सहनसर बाहो, हर मनुख दी कोशिश है मेरियां दो बावां दे च 1000 बावां दा बल लो। सहनसर बाहो, कौन नहीं बनना चाहता, सब कुछ मेरे हथां च होवे, सब कुछ मेरी मुट्ठी दे च होवे। मुगल शहनशाह ते अपना तखल्लुस ही इसे तरह रखते रहे, जहांगीर सारा जहान मेरी पकड़ दे च, मेरी मुट्ठी दे च। अकबर जलालुद्दीन ते नाम से अकबर, पता अकबर किसनू कहने, अकबर दे अखर सब तो वड्डा, इसे वास्ते मुसलमान कहने अल्लाहू अकबर, अल्लाह ही अकबर है, होवेगा अल्लाह अकबर। जलालुद्दीन ने कहा मैं अकबर, गल खत्म। जलालुद्दीन अकबर, कौन नहीं अकबर बनना चाहता, कौन सारिया तो वड्डा नहीं बनना चाहता। और ये हंकार शिखर ते होवे ते मनुख चाहता है खुदा नू भी छोटा दिखाना है, हंकार भी ऐसा करता है। हरनाकश ने किया सी, रब की आंदा मैं खुद रब हाँ, ऐसा कीता सी नमरूद ने, खुदा की होंदा मैं खुद खुदा कीता सी उसने। हथ इतने मजबूत होवन, सारे हथ मेरे अगों जुड़े होवन, हथां विच इतनी ताकत होवे 1000 सिर मेरे अगों झुक जावन। सहनसर बाहो, एक उर्दू दा शायर कहिंदा है, किसी के एक आंसू पर 1000 दिल तड़पते हैं, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। एक हंजू निकले 1000 दिल रो उठे, सारी जिंदगी कोई रोंदा रहे, किसी ने पूछिया भी नहीं क्यों रोंदा, क्यों रोंदा। सहनसर बाहु, दो हथां विच बहुत वड्डी ताकत, इस तरह की शक्ति का जो मुतलाशी होवे ते हथां नूं ही मजबूत करना चाहे, उन्हों कहिंदे सन खत्री, क्षत्री। क्षत्री दे अखरी अर्थ विच शस्त्र जिसके हथ च है, शक्ति जिसके हथ च है, क्षत्री। इहदा अपर भ्रंश हिंदी पंजाब विच खत्री असी कह दिंदे आ, वरना लफज संस्कृत दा क्षत्री, शस्त्र जेदे कोल है, शक्ति जेदे कोल है, छत्री। हाथ बड़े मजबूत ने, हथां च बड़ी ताकत है, ये दो हथ 1000 हथां नूं मजबूर कर सकते ने हथ जोड़न ते, ये दो हथ इतने मजबूत ने 1000 सिरां नूं झुका सकते हैं।

0: क्षत्रि। फिर जेड़ा बारीक कम ना कर सके, अकल नू अगे करना उदा सवाह नहीं, हथां नू मजबूत करना भी उदा सवाह नहीं। हर वक्त भारी वजनी कम दे अपने आप नू लाई रखना, जैसे सारे शरीर दा वजन सिर दा हथां दा पेट दा कौन चुक देन, पैर जात नहीं है, शूदर कोई यात नहीं है, पैर शूदर ने, पर शूदर दी मानता है सिर नहीं पूजिया जाता, हाथ नहीं पूजे जाते, चरण नहीं पूजे जाते, ये भी महज कर दे, पार चुक दे, पेट का भी पार चुके है, हथां का भी पार चुके है, सिर का भी पार चुके है। वजने कम भारी कम ये ना करन, सारा संसार रुक जाएगा, कोई मकान ना बनावे, कोई मोए डोरां दी खल ना लावे, जुतियां ना बनावे, कपड़ा ना बनावे, इटा ना बनावे, ये सब वजनी कम सन, भारी कम सन। तो सिर्फ सिर वाला किथे रवेगा, सिर्फ हथां वाले दियां लोड़ां कित्थों पूरियां होणगियां। इस वास्ते जिन्हां जिन्हां मुल्कां शूदर दा किरति बंदे दा सत्कार होया, सन्मान होया, उत्थे उत्थे किरत करके धन वध गया। भारत दा मुफलिस होना कारण दो सन, एक ते 1000 साल दी गुलामी, दूसरा किरति बंदा शूदर है, जुलाहा शूदर है, चमार शूदर है, राजमिस्त्री शूदर है, लोहार शूदर है, दरकान शूदर, सब शूदर जो किरत करते हैं, ते धन ते किरत नाल आएगा, किरति शूदर, पछड़ गया देश, नहीं ते देश सारी दुनिया दे देशां नालों अगे से। मंगोल भी भारत गए अपनी उदर पूर्ति लई, ईरान गया, अफगानिस्तान गया, अरब गया, फ्रेंच गए, डच गए, पुर्तगेज गए, अंग्रेज गए, सारिया की निगाह विच भारत सी, ओ केंद्र सी, जैसे अज सारिया की निगाह च अमेरिका बने हुआ है, अमेरिका तो भी वध सी भारत। मंगोल उत्थे ही आए, डच उत्थे ही आए, पुर्तगेज उत्थे ही आए, अफगानी उत्थे आए, उज़्बेकिस्तानी और टर्कश तुर्की दे लोग, ईरानी, अरबियन, अंग्रेज, फ्रेंच, सब दी उदर पूर्ति दा केंद्र भारत सी, सोने दी चिड़िया सी। 1000 साल दी गुलामी और 1000 साल तक लुटेरे लुट दे रहे। हुण भी तुसी चले जाओ लंदन म्यूजियम विच, कलगी ते गुरु गोबिंद सिंह दी पई है ना, सोने दे रथ, वड्डे वड्डे थाल भारत तो लैंदे पए, लिखिया है उत्थे कोहनूर हीरा भारत तो लैंदा उत्थे पिया। ये भारत तो लैंदियां चीजां लंदन म्यूजियम दे चो कढ दईए ते रहिंदा कि उत्थे कख कुछ भी नहीं रहिंदा। 1000 पाउंड दी आमदन है, 10 पाउंड टिकट है, जाके देखो कोहनूर हीरा, सोने दे थाल, सोने दे रथ, हीरे मोती, ये सब उत्थों लैंदे। ईरानी लुटते रहे, तख्ते ताउस हिंदुस्तान तो लुट के लै गया नादर शाह, उज़्बेकिस्तानी लुटते रहे, तुर्कमेनिस्तानी लुटते रहे, ईरानी लुटते रहे, अफगानी लुटते रहे, फिर अरबियक आए, फ्रेंच आए, डच आए, पुर्तगेज आए, फिर अंग्रेज आए, 1000 साल तक लुटते रहे। 1000 साल तक जिसनों लुटिया जाए तो रह की जाएगा, फिर रह की जाएगा, फिर
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜੀ?
3: ਹਾਂ ਜੀ,
2: ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਪਕਾਈਏ?
3: ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢ ਵਾਲੇ ਛੁੱਟੀ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਏ।

0: हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। हुण मैं तेरे दर जोगा रह गया किधरे जान जोगा रहा ही नहीं। मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। कहिंदा गल खुदा तेरी समझ च आ गई है पर की करा मैं बोल नहीं सकता गूंगा समझा नहीं सकता। बिसम बिसम बिसमे ही भैये लाल गुलाल रंगारे कहो नानक सन तन रस आइये ज्यो चाख गूंगा मुस्कारे। समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। एक होर गल भी बड़ी कीमती करता है मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। हर दिल दे रब्बी प्यार नहीं पैदा होता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ये ओ गीत है इन्हों हर साज पे नहीं गाया जा सकता। ये ओ राग है ये ओ गीत है जिदे वास्ते विशेष वाजा चाहिदा है विशेष साज चाहिदा है। भाव हर दिल दे चे नगमा नहीं गूंजदा। पहले दिल दी बनतर बनानी पैंदी है सत्संग कर करके कर करके कर करके। तो मैं अर्ज करा उदास होण दे निराश होण दे तीन कारण ने। पहला बड़ा गहरा सरोता होवे ते गुरु दा शब्द चोट कर जाए निराश हो जाएगा उदास हो जाएगा। दूसरा अपनी अकल तो चोट खा लवे बड़ा ही सियाणा होवे हर गल नूं बड़ी गहराई नाल लैंदा होवे। बीमार असी भी देखदे आ पर इक्को ही दिन महात्मा बुद्ध ने जिहदा नां सिधारथ सी बीमार देखिया बस दिल चोट खा गया। मुर्दे असी भी देखदे आ इक्को दिन एक लाश देखी हिरदा चोट खा गया। बुढ़े मनुख असी भी देखदे आ ज़ईफ ज्यादा उम्र वाले असी 90 साल दे असी भी देखदे आ। उन्हें एक दिन बुढ़ा मनुख देखिया सड़क क्रॉस कर रहा सी लाठी दे आसरे थे दिल चोट कर गया। अकल इतनी बारीक इन्हों कहिंदे हिंदी संवेदना। ऐसे मनुख दे अंदर संवेदना बहुत आउंदी है हर गल नूं छोटी दी छोटी घटना नूं भी बहुत वड्डे रूप दे च महसूस करता है संवेदना। असी भी देखते हैं बुढ़िया नूं असी भी देखते हैं बीमारां नूं खुद भी बीमार होंदे हैं असी भी मुरदिया नूं देखे आवेगा इक्को ही दफा देख के चोट लग गए। या ते अपनी अकल इतनी महान होवे मनुख अकल तो चोट खा जाए तो अकल तो चोट खा के भी मनुख उदास हो जाता है निराश हो जाता है। तीसरा संसार तो कोई चोट लग जाए बहुत वड्डा धनाढ़ सी दिवालिया हो गया बड़ी इज्जत मान मर्यादा से सरेआम बेइज्जती हो गई है बड़ी पद प्रतिष्ठा से शक्ति से कुछ भी नहीं रहा। ऐसी हालत विच भी दिल चोट खा जाता है और निराश होके मनुख उदास हो जाता है। उदास होने दे निराश होने दे तीन कारण ने। प्रथम गुरु दा शब्द चोट कर जाए सत्संगी होवे श्रोता होवे। दूसरा अपनी अकल चोट कर जाए। तीसरा संसार तो कोई दुख बहुत वड्डे रूप में चोट कर जाए। हुण मैं इसनों इस तरह बयान करा जो अजे तक पूर्ण तौर ते निराश नहीं उदास नहीं ये कोई गहरा सरोता नहीं कि इन्हों शब्द ने चोट की होवे। दूसरा ये कोई इतना अकलमंद भी नहीं गुस्ताखी माफ कि इन्हों अपनी अकल ही चोट कर जाए। तीसरा अजे संसार तो भी इसनों कोई बहुत वड्डी चोट नहीं लगी नहीं तो मनुख उदास हो जाता है निराश हो जाता है। प्रथम सत्संग विच आउंदिया आउंदिया एक दिन शब्द चोट कर गया, उदास हो गया, निराश हो गया, अकल तो चोट खा के उदास हो गया, निराश हो गया। अकल इतनी महान, संसार छोटा हो गया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। चलो इसी संबंध च मैं कुछ बोल थोड़े सामने रखा। जैसे महाराज कहते ने आम न जान एक खेल बनाया, अज्ञाकारी की नहीं माया। बहुत महान बारीक बीन मनुख नो सब तमाशा प्रतीत होता, खेल कुछ भी नहीं। कितने लहरां बन रही ने, मिट रही ने, बन रही ने, मिट रही ने, संसार बन रहा है, मिट रहा है, मनुख जम रहे ने, मर रहे ने, जीव जम रहे ने, मर रहे ने, तमाशा खेल। अकल महान होवे मनुख छेती उदास हो जाएगा, निराश हो जाएगा, अकल तो चोट खा के। इस संबंध च भी मैं गालिब दी एक नजम थोड़े सामने रखा। वो कहिंदा है बाजीचा इतफाल है दुनिया मेरे आगे, सारी दुनिया की ये बच्चियां दा तमाशा, बच्चियां दे खिडौने और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तिफल बच्चे नू कहिंदे ने, इतफाल बच्चियां दी जमा बहुवचन। बाजीचा इतफाल है दुनिया मेरे आगे, सारी दुनिया की है छोटे बच्चियां दा तमाशा, खिडौणिया दी खेड। बाजीचा इतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। दिन रात बच्चियां दा तमाशा हो रहा है, सवेरे खा लिया, शामी खा लिया, फिर सौ गया, फिर दूजे दिन फिर वही कुछ कीता है जो कुछ रोज करते हैं। सब कुछ रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन चल रही है, पुनरुक्ति चल रही है। एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नजदीक, तख्ते सुलेमा नहीं सिंघासन, जेदे लई दुनिया कितने पापड़ बेलदी है। कोई पिंड दा चौधरी बनना चाहता है, कोई एमएलए बनना चाहता है, कोई एमपी बनना चाहता है, कोई मिनिस्टर बनना, कितने पापड़ लोकी बेलदे ने। कहिंदे बच्चियां दा तमाशा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक खेल है औरंग, औरंग तख्त नू कहिंदे ने, वड्डा तख्त उनू औरंग कहिंदे ने, ऐ छोटा तख्त इनू मसनद कहिंदे ने, मसनद। गुरु अमरदास जी महाराज ने 22 प्रचारकां नू ए मसनद बख्शिश कीती सी, मंजियां बख्शिश कीतियां सन। पंजाबी च असीं उन्हां नू मसंद कहिंदे आ, फारसी दा लफ्ज़ है शुद्ध मसनद, ए मसनद है। जिस ते धन गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है, इनू फारसी देच औरंग कहिंदे ने। वड्डा तख्त जिस ते बादशाह बैठे औरंग, छोटा तख्त जिस ते अहलकार बैठन मसनद। शाहजहां दा लड़का मयोदीन प्यो नू जेल देच पाके ते तीन भरावां नू मार के जिस दिन सिंघासन ते बैठा है, उन्हें अपना तखल्लुस रखिया औरंगजेब। नाम वैसे उसका मयोदीन सी, शायद आपको पता होवे आद काल तो कवि लोग, गुणी लोग, दार्शनिक, फिलोसफर, राजे महाराजे बादशाह अपना तखल्लुस रखते रहे, रखते रहे। तखल्लुस का मतलब है खास नाम, हिंदी च कहिंदे उपनाम, कोई उपमा है गुणात्मक नाम, कोई गुण ने तो गुणात्मक नाम रखे है, तखल्लुस रखे है। जैसे हुमायूं का लड़का जलालुद्दीन जिस दिन सिंघासन ते बैठा है, उन्हें अपना तखल्लुस रखिया अकबर। अकबर का मतलब है सब तो वड्डा, ताई मुसलमान कहिंदे ने अल्लाहू अकबर, अल्लाह ही सब तो वड्डा है। पर जलालुद्दीन ने अपना लकब रखिया जलालुद्दीन अकबर, जलालुद्दीन ही सब तो वड्डा है। इत अकबर उसका तखल्लुस है। अकबर का लड़का शाहजादा सलीम जो जोधा बाई दी कुख तो पैदा हुई सी, ते जोधा बाई राजा मान सिंह वालिए जयपुर दी भैण सी, ए राजपूत अपने धी भैणा दे डोले मुगलां नू देण लग पए सन, जिहदी अगां चल के धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने मुखालफत कीती। राजा मान सिंह दी भैण जोधा बाई ए बेगम से अकबर दे इहदी कुख तो पैदा होया शाहजादा सलीम वड्डा होके जिस दिन सिंघासन ते बैठा है इन्हें अपना तखल्लुस रखिया जहांगीर। जहांगीर का मतलब सारा जहान मेरी पकड़ दे च, मेरी मुट्ठी च। जहांगीर इसने गुरु अर्जन देव जी ने शहीद किया। कल गुरुपुरब तुसी मनाना है। इसने ही तरह तरह के तसीये टाए। इसने ही बहुत वड्डा जुलम किया। दोगला सी जोधा बाई का लड़का सी अकबर का लड़का सी। तखल्लुस रखिया जहांगीर। जहांगीर का लड़का शाहजादा खुर्रम वक्त पाके जद सिंघासन ते बैठा है तखत ते बैठा है फिर इन्हें अपना तखल्लुस रखिया शाहे जहां। शाहजहां सारी दुनिया का बादशाह निरा हिंदुस्तान का नहीं। ते शाहजहां का लड़का मुइनुद्दीन जिस दिन सिंघासन ते बैठा है इन्हें अपना तखल्लुस रखिया औरंगजेब। औरंग कहिंदे ने तखत नूं वड्डा तखत। जेब कहिंदे ने शिंगार नूं। औरंगजेब तखत दा शिंगार तखत दी शोभा तखत दी माण मर्यादा ए उसने अपना तखल्लुस रखिया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जुर्रत जफरनामे राही लिखते ने औरंगजेब न जेबन तुरा नाम औरंगजेब के औरंगजेब न बायद फरेब ए मुइनुद्दीन ए नाम तेन शोभा नहीं देता। तू औरंगजेब नहीं है। तेरे जैसा बंदा जब तखत से बैठता है तखत बदनाम हो जाता है तखत भ्रष्ट हो जाता है तख्त मैला हो जाता है। तू औरंगजेब नहीं है। जुर्रत धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। तुरा तर्क ताजी ब मकरो रया मरा चारा साजी ब सिदको सफा न जेबत तो रा नाम औरंगजेब के औरंगजेब न बायद फरेब। महाफरेबी है तो झूठा है चलाक है। हमो मर्द बायद शबद सुखनवर न शिख में दिगर दर दहाने दिगर तेरी जबान ते कुछ और है तेरे दिल दे कुछ और है। तू ते मनुख ही नहीं है। तू ते इंसान ही नहीं है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी ए जुर्रत उसनु जो है ऐसा आख है। औरंग वड्डा तख्त छोटा उनु मसनद कहिंदे ने। पंजाबी शब्द बन गया मसन। जिन्हां नु गुरु अमरदास जी महाराज ने मसनद बख्शी सी मंजी बख्शी सी तख्त बख्शिया सी इन्हां दी पूजा प्रतिष्ठा इतनी होई संगत ने मान सन्मान इतना दिता इन्हां कोल हजम ना होया। इन्होंने खुद गुरु होने का नारा लाया और भ्रष्ट हो गए। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अगा चल के ये मसंद प्रथा खत्म करनी पई। हुण मसंद का तो मतलब है जिन्हों तखत मिले है। लेकिन सिख जगत दे च आज गाल बन गई। किसी नूं गाल कढ़नी होवे तो कह दिता जाता है मसंद है निरा ही मसंद है। लेकिन मसंद का मतलब है छोटा तखत जिससे बैठे हैं ए छोटा तख्त। गुरु अमरदास जी महाराज ने तखत प्रचारकों के लिए बनवाए सन भी संगत उच्ची थान ते बैठ के गुरबाणी की व्याख्या करन गुरबाणी सुनान ताकि संगतां नूं दिखाई देन ते संगत नूं ए देख सकन संबोधन कर सकन ते विचार दा ज्ञान दा गुरबाणी दा सन्मान होवे सत्कार होवे। ये गुरु अमरदास जी महाराज ने प्रथा जो है चलाई सी। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा। गालिब कहिंदा एक खेल है औरंग सुलेमा मेरे नजदीक। ए औरंग ए बादशाह दा तख्त बच्चियां दा तमाशा है कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। एक खेल है औरंग सुलेमा मेरे नजदीक। एक बात है अजाज मसीहा मेरे आगे हजरत ईसा दे मौजजे। कथावां ने कि हजरत ईसा जिस बीमार दे सिर ते हथ रख देंदे सन तंदुरुस्त हो जाता है।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਲਸੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਰਾਜਨ ਮੈਂਗੋਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂਗੋਜ਼ ਹੁਣ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼ ਚੈਰੀਜ਼ 3.48 ਨੂੰ ਪਾਉਂਡ, 4 ਕਿਲੋ ਰਾਜਨ ਹਿਡਨ ਮੈਂਗੋਜ਼ 16.99 ਦਾ ਬਾਕਸ, 10 ਪਾਉਂਡ ਸਨੋ ਬੋਏ ਰਸਲ ਪਟੇਰੋਜ਼ 3.49 ਦਾ ਬੈਗ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਲਾਲ ਮਸਰ 2.99 ਦਾ ਬੈਗ।
3: ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਗਗਨ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਬਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604-349-1313 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ। 6043491313 ਯੂਨਿਟ 103-8140-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ, 6043491313, 604-349-1313 ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ, ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ।
4: ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
5: ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੀਅਲਟਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜੋ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰੀਅਲਟਰ ਹਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ, ਜੋ ਆਪਣੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਰੀਮੈਕਸ ਦੇ ਟਾਪ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਰੀਅਲਟਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
4: ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਗੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ।
5: ਸੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ, ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ ਨੂੰ
4: 604-351-5111 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 6043515111 ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ।

धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं हक पराया नानका उस सुवर उस गाय, नहीं खाऊंदा होवेगा हिंदू गऊ, पर पराया हक खा रहे तो गऊ भी खा रहे, नहीं खाऊंदा होवेगा मुसलमान सुवर, पर पराया हक खा रहे तो सुवर ही खा रहे। हक पराया नानका उस सुवर उस गाय, एक देश दूजे देश का हक मार जाता है, बड़े वड़े वड़े देश जो छोटे देशों का हक खोल लेंदा है, सारी दुनिया च इस तरह चल रहा है, वड़ियां कौमां छोटी कौमां का हक खोल लेंदियां ने, वड़े मनुख छोटे मनुखां का हक खोल लेंदे ने, सुअर खांदे ने या गऊ खांदे ने और की गए, अगर इस हिसाब नाल लोगे तो सुअर खांदे ने गऊ खांदे ने, हक पराया नानका उस सुअर उस गाय, गुरु पीर हामा ता भरे जा मुरदार ना खाए, गुरु पीर हामी भर सकदा अगर मुरदार ना खावे, तो मुरदार की है, हिंदू लई गऊ खाना मुसलमान लई सुअर खाना पराया हक मुरदार है, मुरदा है ये तो मुरदा खाना है, औखे ना होना बगौर गहराई नाल देखोगे वड़े वड़े देश छोटे देशां नू खा रहे ने, मुर्दे खा रहे ने, वड़ियां वड़ियां कौमां छोटियां कौमां दा हक मार जांदियां, वड़े वड़े मनुख छोटे मनुखां दा हक मार जांदे ने, जद किसे दा हक मार लिया तो मुर्दार ही खादा है और की खादा है, इसे नू हराम कहंदे ने, ये भी महस कर दे। और महाराज कहंदे ने बड़े ने इतनी वड्डी सियाणप है, खांदे भी हराम ने, अगले नूं कख भी नहीं पता चलता, खांदे भी मुरदार ने, अगले नूं कुछ भी नहीं पता चलता, इतनी दृष्टि ते है अंधेरे च वेख सकदे ने, रोशनी च नहीं वेख सकदे, तो जो अंधेरे च वेख सकदा है रोशनी च नहीं वेख सकदा गोगू है और कोई की है, गोगू है। संपत दौल झूल संग झोलत माया मगन फिरत घोगना, सतगुरु ने उस प्रश्नकर्ता नु चुप करा दिता सी जिसने किया सी महाराज शब्द सारिया दे हिरदिया नु रोशनी नहीं देंदा, सूरज देंदा है, सूरज सारिया लई बार चानना कर देंदा है, गुरु दा शब्द सारिया दे हिरदे च प्रकाश नहीं करदा, फिर ये करोड़ा सूरजां वर्गा किस तरह होया, दो शब्द बर्दाश्त कर लेना, हाथ जोड़ के मैं माफी मंगा, घुग्गू थोड़े ने बहुत ज्यादा नहीं ने, पंछियां दे पशुआं दे ओ थोड़े जे ने, जिन्हां रात दी तारीकी दे ते दिखाई देंदा है, दिन दे चानने च नहीं दिखाई देंदा, मनुखी दुनिया च ये घुग्गू बहुत ज्यादा ने, बहुत ज्यादा ने, झूठ दे तेरा सौंदा है, सच दे कोई नहीं, गंदे गीतां दे तेरा सौंदा है, शब्द दे कोई नहीं, बिखे नाद दे तेरा सौंदा है, रब्बी संगीत दे कोई नहीं, इन्हां दा तालमेल रात नाल बैठदा है दिन नाल नहीं, तो चूंकि रात नाल ताल बैठदा है तो इन्हां ने साधन भी उस तरह दे बनाए ने, क्लब ने थिएटर ने शराबखाने ने वैशियाले ने जुए खाने ने, सब रात नूं खुलदे ने, इन्हां दे दरवाजे रात नूं खुलदे ने, इन्हां दी रौनक रात दी है, दिन दी नहीं है। लॉस एंजलिस दे इक सज्जन मैनूं कहण लगा, उत्थे वी किधरे धन गुरु नानक देव जी महाराज दा हुक्मनामा आया सी, ते उस दिन किधरे हुक्मनामे दी कथा करनी सी, इतवार दा दिन सी, राती होवन कालियां सुपे दा सेवन, देहो बग्गा तप्पे घणा कालिया काले वन, पहले पातशाह जी दा वाक है। सूरज दिन चिट्टा चढ़े है, पर कालियां चीजां ते कालियां ने कोई चिट्टियां नहीं होईयां, रात काली बोली है बड़ी भयंकर मसया दी रात, पर चिट्टियां चीजां ते चिट्टियां ने कोई कालियां नहीं होईयां,
महाराज कहिंदे करोड़ा भी दुष्ट मिल जान संत अपनी सजनता ही नहीं छड़दा, भावे कितनी मस्या दी रात हो जाए कितनी कालक हो जाए उहदी चिटियाई रहेगी। राती होवन कालियां सुप्पे दा सेवन, मल्ला पहला सोई मल्ला पहला है, पहले पातशाह जी का वाक है। इनू कबीर अपने ढंग नाल इंज बयान करते हैं, संत न छाड़े संतई जे कोटक मिले असंत, मलयागर भयंगम बेड़े ओ तो शीतलता न तजंत। इन्हां इलाकों ते चंदन नहीं है, चंदन भारत विच मैसूर स्टेट विच बहुत ज्यादा है, कर्नाटक विच थोड़ा जिहा, तमिलनाडु विच भी है पर ज्यादा कर्नाटक विच है, थोड़ा थोड़ा आंध्रा च भी मिलता है, मध्य भारत विच भी मिलता है, पर अच्छी नस्ल का जिहड़ा चंदन है बावन चंदन वह कर्नाटक विच है, बड़ा कीमती। अक्सर जद चंदन दे लकड़ की कटाई आती है तो फिर मोर छड़े जांदे ने, क्यों? चंदन नू सप लिपटे होंदे ने, कोबरे फनीगर नाक। चंदन बड़ा शीतल है, चंदन बहुत ठंडा है, तो सप दे सिर दे जड़ी जहर आउंदी है अगर वध जाए सीमा तो फिर खोलदी है, अगर उसनू कोई जानदार चीज जानदार जीव ना मिले हो सकता है पत्थर नूं भी डंग मारेगा जहर कढ़न लई, क्योंकि सिर उसका खोलदा है, वह दरख्त नूं भी डंग मार सकता है। कुछ तो कहिंदे ने उही पत्थर संखिया बन जांदा है जिन्हों फनियर नाग डंग मारदा है, भारत दे इस तरह मनदे ने वैद लोग, उन्हों संखिया कहिंदे ने। ए सप चंदन नूं लिपटे होंदे ने, चंदन ठंडा बरा है, उन्हां दे सिर नूं ठंड मिलदी है। अक्सर उत्थे मोर छड़दे ने ते मोर सप्पां नूं खा जांदा है, मोर सप्पां ते हमला करदा है, ते सप डंग मारन विच मोर नूं सफल नहीं आउंदा क्योंकि उसदे ऐसे पंख ने उन्हूं कोई चोट ते हानि नहीं पहुंचदी। अक्सर सप नसदे ने भजदे ने मोरां नूं वेख। भगत कबीर कहिंदे ने सैकड़े सप लिपटे ने चंदन, क्या चंदन जहरीला हो जांदा है? फिर चंदन कोई गर्म हो जांदा है? नहीं, चंदन सुगंध ते ठंड सप्पां नूं भी दिंदा है। संत ते ओ है जिहदी महफिल विच बैठ के कोई चोर भी शांत हो जाए। इतनी मेहरस करदे हां, मैं पढ़ रहा सिख सूफी फकीर दी गाथा हसन दी। रात दा वक्त, अद्धी रात दा, ईरान दी गल, ईरान ठंडा देश, बर्फां पैंदियां, चोर किदे हसन दी कुटिया दे च वड़ गए। हसन लेटिया होया सी उपर कंबल, दया आ गई, इस चोर नू मेरे घर चो कुछ नहीं मिलेगा, खाली जाएगा, अद्धी रात नू आया है, ठंड दे विच आया है बेचारा, खाली जाएगा। कदी किसे संत ने चोर नू नहीं मारिया, चोरा ने चोर नू मारिया, बगौर मुताला करना। कदी किसे संत ने दुष्ट नूं नहीं मारिया, दुष्टा ने ही दुष्ट नूं मारिया, कदी बगौर मुताला करना। जैसे वो देखदा है चोर दी अखां रात नाल तालमेल बिठा लैंदियां ने, क्योंकि उहदी जिंदगी रात दी है, सहजे सहजे उसनूं रात विच दिखाई देण लग पैंदा, अंधेरे विच दिखाई देण लग पैंदा। उन्हें देखिया कुछ नहीं है, जान लगया। हसन ने आवाज मारी, मित्रा होर ते मेरे कोल कुछ नहीं, मेरे कोल कंबल है, तेरे कोल कंबल भी कोई नहीं, बाहर ठंड बड़ी है, ए ले जा, होर अपने कोल कुछ भी नहीं, ए ले जा।
خالی نہ جا، میری توہین نہ کر، میری کٹیا چوں، میرے گھر آندا ہی نہیں کوئی، توں آیا اور ادھی رات نو آیا، خالی جا رہے ہیں، مینو دکھ ہے، میرا ہردا تڑپتا ہے، میرے تے ترس کھا، میرے ہردے نو تڑپا نا، اے لے جا کمبل، چور دی ساری چوری نکل گئی، پتا ہے اس چور نے کی آخیا، زندگی چ پہلی دفعہ کسے امیر دا گھر لبیا، آیا تے میں لٹن سی، میں خود لٹیا گیا، وہ چور فقیر ہو گیا حسن دی سنگت نال، حالانکہ اس نو چور تے بھی ترس آ رہا سی۔ دھن گرو نانک دیو جی مہاراج کہتے ہیں کتنی کالی رات ہوئے، چٹیاں چیزاں تے چٹیاں ہی رہندیاں نے، کوئی کالیاں تھوڑیاں ہو جاندیاں نا، اور کتنا ہی چٹا دن تپیا ہوئے، چاروں پاسے اس نے روشنی چٹیائی پھیلائی ہوئے، پر کالیاں چیزاں تے کالیاں ہی رہندیاں نا۔ پنگتی میں تھانوں پھر سناوا، راتی ہوون کالیاں سپے دا سیون، دیہو بگا تپے گھنا، کالیاں کالے ون۔

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
0: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
3: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gerdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors.